0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: तक मौजूद है। जो धूप के मोजे से आपके चेहरे को रखे महफूज, आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन्स दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345923280 0300585848481।
1: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक, न्यू हेयर ग्रोथ, खाने के फवायद, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जेल के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, वालिद के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार में 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट अस 0345923280

साथी बटाग्राम प्रोड्यूसर डे रजियात मनरम और साथ साथ ही जितनी भी अभी मोटरवे या जीटी रोड पे ड्राइव कर रहे हैं भाई, उनको कहेंगे भाई ड्राइव केयरफुल, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी। और जो लोग इस वक्त जा रहे हैं भाई अपने शहर, अपनी गिली, अपनों को छोड़ के चले जा रहे हैं भाई, अपने उन लोगों को छोड़ के जा रहे हैं जो भाई जिनके बिना जिंदगी जो है भाई बहुत मुश्किल होती है, बट मजबूरी है भाई, करना पड़ता है भाई। तो अगर आप अपने छोड़ के चले गए तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। कि आप वापस आए और कामयाब होकर आए भाई। बटाग्राम वाला ठीक वेम करा औस्तासो बटाग्राम वाला उस्तासो खल का खटोल मुसाफर दी, उस्तासो खल का खटोल बाहर दी दी तो वे खल चितासो से का ना विशा तशा धमक और रविया सड़ी सरक्षा की चिदो मात सवे माय औरस लेकिन जो खैर पहले इंट्रोस बदलो माँ माँ ये औरस पर इंट्रो के वे माँ डाडेर खलक ची मुंग नजीक ने दा शातो गुरी नदिया मुंग सर समय तलवसी वी सम शकुन वी नदी की ओ मामी रिंगो कोई मुबारक शा आनी आर के ना ये मुबारक शा वी तो समय लेकिन दखल को द जरूर खबर के माँ वाले वी दाजले में जो सड़े सऊदी अरब तत्न पाखिर के शात कतली उस ओसम सूचना कम चिदो बस समय फोन बताओ क्या कर रहे समझने वाले समझ जाते और जिच कल तासो नजम शात शात मन गोरम ज्वंत पश्चात शात गोरम लक बेल ले जवार गर्ज कोर तजीला चियो दल सड़े बेलू बस ब्या ब्या मो बेल ले भाई जाने दो। और मामी गानो चाची गानो तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या हाल है भाई, गम खादी कैसा है। अटक के मामिया भी गम खादी करता है ना, क्यों नहीं करता भाई। ज्यादातर लोग वहां जॉब लिस्ट होते हैं, बट ये शादियां वगैरह होती है उधर, उधर तो होटलों में होती है, यहाँ पे घरों में होती है। बट तो थैंक यू, आप अपना शादी एंजॉय करें, हम अपना करते हैं। सवाबे सुमरा सवाबे खल कसम खुकुली दी करा सवाबे खल कसम ताबेदार दी सवाबे खल कडेर द नूर खल को नडेर खरी करा खेरात ले चतरा नशे जो कुछ चर तम तलिम चाला खेरात ले करा बस चावली पखकड़ी द पास है पियो टीका चूली अगर टीका बरन बाबा उखरिया बरन माशुम उखरिया अगर बरन सरखा मखा की नहीं अबिया बस पोरे चावले खुरे पदे मरे मरे के बदिन खिली खुआरा खुआरी खो आगे कस्त चे लाडशी हो बाबा वर सर के नहीं माशूम वर सर के और चिला बाबा पकम लास पाने नस्वार लगूली पागर नस्वार है ते नीली नीली कही और गथा सवाबीवाल में पदे आंके चाहता पर्सनल वकर मिल मशीन ब्याखे दी लेकिन मतलब बेटक द पारा सलाद चावले वखा चिकन दाहर सी।

सर्व व्हाइटनिंग हमदर्द है। हर जन स्टोर मेडिकल स्टोर की मिलावेगी दिल तजी कम दे द उमर जन स्टोर दे उमर बई नंबर द तवे मुंबे खो कता शिकायत कवे कता से मिलावेगी ना ता स्टोरेज कम जे के मिलोशी दी दुकानदार से रिश्तना या पबटाग्राम की निष्ठा पबटाग्राम वालों दा नंबर नोट के और ता से शिकायत के चे कता से नवे प्रोडक्ट न मिलावेगी दे नंबर वा निकालो के 0319-98-98-841 0319-98-98-841 पदे बा निकालो के 0319-98-98-841 उमर जन स्टोर दे द सवाबे ग्राउंड नशात हाई स्कूल तो मखामा।

आंसू बहाने से कोई अपना नहीं बनता। जो दिल से प्यार करते हैं वो कभी रोते कभी रोनी नहीं।

0: मेरे ही हाथों पर मेरी ही तकदीर लिखी है,
1: कोई तो संभाले ना।
0: मेरी ही हाथों पर मेरी ही तकदीर लिखी है और मेरी ही तकदीर पर मेरा बस नहीं चलता।

फिर कभी नहीं हो सकता मोहब्बत सुना तूने वो शख्स भी एक था और मेरा दिल भी एक है। वफा सभी को मिली सिवाय हमारे। वफा सभी को मिली सिवाय हमारे, हमें जब भी प्यार हुआ तो बेकदरों से हुआ। कमाल का शख्स था जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। राज की बात तो ये है कि दिल उससे अब भी खफा नहीं।

जब वो मेरा नाम अपने हाथों की लकीरों में तलाश करके तक गई तो सर झुकाए और रोकर कहा, लकीरें तो झूठ बोलती है, तुम मेरा ही होना।

0: हासिल जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। अरे बाबा तुम बदलो तो मजबूरियां, हम बदले तो बेवफाई।
1: साथ साथ चलने वाले राह क्यों बदलते हैं,
0: बस जाते हैं दिल में इजाजत लिए बगैर।
1: रास्ते भटकते हैं
0: वो लोग जिनको हम जिंदगी भर पा नहीं सकते।
1: दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है।
0: बात तो आम सी है पर इतनी आम भी नहीं। अरे सबको खुशियाँ मिल जाती है पर हमारा हिस्सा खो जाता है।

अरे गत अस्सलाम वालेकुम शाबाई सिंह ताबिंदा यम सिरख डीरिना बाई गो सकेगा मा नजीर बाई बकाल वाखले गट सड़ो सरमग कले लस्ट कौखा सलाम भाई सो आसमा चतरप्ले नेम टोलो जिनको तो सलाम स्पेशल सलाम ताउस्ता

किया है हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ अरे हम प्यार नहीं करते हम इश्क करते हैं हमें प्यार नहीं होता भाई हमें इश्क होता है जब करते हैं ना तो दिल से करते हैं सर कभी आपको प्यार हुआ है एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था फिर क्या हुआ फिर बिजली चली गई यार ए वही जान में पे दानवा ने शिंदे ले दे समद तबाह है मीन में कड़ेरा यार कम जमुंग हक थे उस दा जमा हक थे और ईदन को और खा पपलेट के चावले प्रति दी चम्मच प्रोते दपा सपे सलाद दी टमाटर दी बादरंग दी प्याज दी चना दा और नोर इनवर्ट नाट इनवर्ट दा जमा हक थे उनदा जमा हक थे करा औदा गर्मी दी मजेदार इम दी पपलेट के मरात प्रति दी उबमरात प्रति दा जमा हक थे ना बजदा से खुरमे

0: जो मेरा है वो मेरा ही होगा। कालू केशाबा डबे तोर दे कारे मुकम्मल स्पिनी मी एम अगेन सर बुंग जानता नो टेंशन विटामिन सी पे स्वाश और ग्लूटा वाला क्रीम राउडी दी ही एम फ्रॉम जेदा मीना वालों गलत चीजों ने मैं इस्तेमाल खा जिन्होंने इस्तेमाल किया आगा चीजों ने इस्तेमाल से वापस संभाली शब के कालू के पास 0311 720 5726 गुरु चुड़ुम्बे कालर मुंग सर पास सोखते अस्सलाम वालेकुम भाई दी खरे सोख द कम जैना नाजी पर खैर आले सिंगे खे अमीन अमीन नाजी जो खेम से समान या मिले का मतलब मात सिर्फ नास्ते दुआ गाने रात के
1: दा खबर है
0: सम पख करी थी कार मार दे को कना
1: भाई
0: सिंह नाराज तो ये पर पटे मारे खर का घटा कटवे की मेहमाने मेहमान राशि ने ब्याह पैसा सिंगे करा लीगी
1: बिल्कुल
0: ओके जी अल्लाह पा मां डेर ज्यादा मना ना गुरु जी सर प्लान वाइज हो गया अस्सलाम वालेकुम।

0: हेल्थ प्रोग्राम में। इनके अलावा आप मुझे गेम शो में भी सुन सकते हैं। बिल्कुल जनाब, हफ्ते की नाइट यानी मतलब फ्राइडे के दिन रात के 10-11 बजे से लेके 12 बजे तक गेम शो प्रोग्राम में आप मुझे सुन सकते हैं जवाब। और इनके अलावा स्पोर्ट्स प्रोग्राम में हफ्ते के रोज 4 बजे से लेके 5 बजे तक शाम के टाइम बिल्कुल आप मुझे सुन सकते हैं। इनके अलावा इतवार के रोज भी 12 बजे से लेके 1 बजे तक आप भी मुझे सुन सकते हैं स्पोर्ट्स प्रोग्राम में। और इनके अलावा जनाब कभी कभार मैं 12 बजे से लेकर 1 बजे तक भी प्रोग्राम करता हूँ, गपशप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं बहुत सारा गपशप आपके साथ लगाता हूँ, कभी कभी नरखनामा भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सो आज मेरे साथ नरखनामा मौजूद नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ जैसे ही मेरे पास अपडेट आएगी नरखनामे के हवाले से मैं जरूर प्रोग्राम आपके लिए शामिल करूँगा। जवाब मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम मैसेजेस कर रहे हैं और अब इंतजार कर रहे हैं। तो सोच इंतजार की घड़ियाँ खत्म, हम आ चुके हैं, हम आ चुके हैं जनाब। आप टेंशन क्यों लेते हैं? टेंशन लेने का नहीं, हौजी देने का नाम भी नहीं है। सो जनाब टेंशन फ्री हो जाइएगा, अब हम आ चुके हैं बिल्कुल। और माँ तो खो पता नवा उसमें ऐसी रेडियो ऑन को सासु प्रोग्राम हो डायरेक्ट में तासु ते ऐसे में सुखो भाई माँ भेजना है रहमान दामन रेडियो FM 88.4 प्लेटफॉर्म नाम नाम दिखेगी टिक तर ये भी बच्चे पूरे बताशन का प्रोग्राम कॉल पर 0309-711-8899 हमने प्रोग्राम पर खाली कॉल तक कॉल कौन की सुख दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, खुशहाल
0: जी बिल्कुल
1: बाबू जी
0: का ना कल कल कल कल जरा खता के मायूब का बिल्कुल दस वी बिल्कुल दस रगले मा प्रोग्राम दे मच म्यूजिक खैर खैर सासु दुआ गाने दी आयुब काका दर तो वो या कनाम कमगो गुरु नन सब अडेर वाड अलकान दी वाड माशुमाना दी चगी मोटरसाइकिल वगैरह चले वीनु आया वड़ोला गाड़ी चलोल तो अपने खुदल पकार दिया ना
1: ये जी कोल के दन में चली शहर है और ये कोल ना बाद ना
0: कोल ना बाद ना कोल की जो मतलब मोटरसाइकिल चलो लिखेगी
1: ना चिकन पी गया हूँ ना मोटरसाइकिल और कोई नहीं लेगी पता
0: क्या नाम अभी उंगले पर चढ़ रखा
1: वो अतः उसका न कम बचने की सुबह मोटरसाइकिल या गाड़ी और क्या ना जाएगा कि
0: बस अक्सर कम गो गुरु मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल राजी दगर मोबाइल रोजाना राजी दादा कम जेना राजी आए तो मजदूरी खुन के अजमा खुद तनख्वाह चर्ची हो के नखरे हो के अगर मतलब नजर साइकिल पकड़ दी क्या सोच पकार दे दे खबर तो डुम्बे सोच पकार दे बार उस मतलब मुश्किल आदमी
1: है
0: ना मन को आयु का खुशहाल रहता उसे
1: वालेकुम
0: असलम डेरा से मन सर आयुब का

हाँ हाँ जी, तेरे बिना दिल नहीं लगदा, कैसे कहूँ कहाँ जाऊँ कैसे करो सजदा। बिल्कुल जनाब, दगा संग बता समृद्धि वीद राहत फतेह अली खान पवाज बंदे दामन रेडियो पे मटासिया शहरी चार द प्लेटफॉर्म ना दगा प्रोग्राम तास्तो बड़ान दिखी गी टिक तर अहो जी हाँ टाइम पर एक टाइम तो चीवी लिखी गी ये वो बजा बिल्कुल सच कॉल पर पीडी सेल बंदे हूँ मैं और उधर करेंगे सच कॉल पर से 3911 88 नाम में हम दा प्रोग्राम बर खदीसो कॉल तब तक उरियो कॉल अगलू अगर ना बाद जैसा से मैसेजेस

0: बहुत शुक्रिया जी, खुश रहिएगा। देर से तमन्ना ना सासो, पर मैं ऐसी जगह में जी सलाम भाई सिंह गई।
1: जो दिल के पास रहते
0: खची खा दस हो देर से तमन्ना ना खुशहाल रहता उसे बड़ा खबर में भाई प्लीज उर्दू सॉन्ग लगाए ना यार अहम पिशो। अच्छा जी बस लगा हुआ है देर से तमन्ना ना सस्तो मैसेज कहूँ सर सर बल में सीधा कर दिवाई छे मामू प्रोग्राम सम सकई था दिया एहसान मामू
1: खुशी
0: मामू दास उसे पकड़ दे था दिया एहसान। अच्छा जी मुझे पकड़ दे समा पखियाल लोबिया लगा से लोबिया छोला था पता लगे ना जी बस पकड़े हुए किचन के बाद ऐसा सुन रहे ज्यादा मन ना हां प्रोग्राम टाइम चिकन रख पर खत्म तरफ दौरे से दिले सो तो टोलो डेरे ज्यादा मन ना को छको आज कुले से मिसकुल डेरे से मन ना छपने से खबर डेरे से पता लगे दिले में सलफा का सीमा ना दाशी विचार तो सुन खने मिले दिन बस नो गाड़ माफी बखना खुश से मन ना दाखल कुछ चीज का प्रोग्राम सब पूरे यवा घंटा खामोश है सर बावरे दिले लगे दे मन ना को मतलब लोग यवा खबर अपना जो ना डेर ख्याल साथ है दाखल खल को हम डेर ख्याल साथ है कम से सासु ख्याल साथ है पर जिंदगी कैसे खबर मैंने बिल्कुल मायूस के गए जर कमायूसी पक पलगा ना कामिला आगे खल के कम चेतन और खल कुछ में के गोर लगावे अगर तुम मारियो को सर खातिर ले जापिल ले अपन पर जिंदगी में फोकस करे तो और खल को जिंदगी चेदा बिल्कुल मुतबा कवे खले जो दवा पारे ला सुचे तो जमानम ताज रहमान ने दगा नाम खल दवा गाने के लाजिम याद साथ है के देश जमा सु खुशाली ने रास्ता सु तो दवा गाने मुंतजर भी के चले तक बेवफा सा गाने चले बे उकड़ा वफा दास सर बाकी के और प्रोग्राम की मुलाकात तेरा वक्त पूरा कोई मेजबान ताज रहमान और के जज्जत खुदा पमान।

0: हवेलियां, जिला एबटाबाद। आइए इस बाबरकत रूहानी इज्तिमा का हिस्सा बनिए। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और औलियाए कराम की निस्बत से अपने दिलों को ईमान, जिक्र और रूहानी फयूज़ो बरकात से मुनव्वर कीजिए। दरबार आलिया कशका शरीफ आपकी आमद का मुंतजर है।
1: मत और राबते के लिए इन नंबर्स पर राबता फरमाएं। 0300-59-00-380, 0322-918-1418, 0331-500-2839।

खान पनि मलाई अर्की बढी प्रिय। हाउ इज गुलाब वेलकम सर पत दिन लगी आधा दूर से चिर तले वे गुलवेश गुलवेश दा से कार दे कना मोदा खबर में बार बार रोकला बस ते कना सके परे वाबड़े वाले में जुर्माना के जोड़े।

उसमें तो उतर शुक्र बंदी पकी कम डाली विजी अरमान अरमान दादा कुरा कशकूर बचा फिर तवी दमा ये दड़ कशकूर।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक।
1: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

सुनने वालों दादे पे मटा सिशारे चार रेडियो मन बटाग्राम कोला दा बटाग्राम मनन दागा चाकू सिख सोक देवा की डिप्टी कवि जमंग प्रोग्राम औरी सोक देवा की द कोर कार कवि जमंग प्रोग्राम औरी सोक ड्राइविंग कवि जमंग प्रोग्राम औरी छाप सर पंडू खे दे पलार रवान दे और रेडियो मैंने लगोल ले आगे तक सुर सलाम शिन सलाम स्पिन सलाम शोक दे वक्त बटाग्राम तरा रवान वे आगू तो वेलकम को सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम डेरा मन नस्तासु SW by Singh.

एम पिशो पिशो मंग मेसेज कर दे प्रोग्राम और प्रोग्राम खेसता दे देखा मैंने ना पिशो सलाम वालेकुम जिम बनारस खान स्टासु प्रोग्राम डेर खेसता दे तासु डेर कीमती खबरें कवाए टोल मीना वालो था मामल भी उखे निजाम से डेर खिस्ता खबर उखड़े मेरा मन ना मेरे जान टोल तसलाम बनारस खान इम चाद कस्ता परवेज तसलाम सलाम वालेकुम निजाम मामू आप कैसे मेरी तरफ से आल लिसनर को सलाम और आपको स्पेशल सलाम आई एम नफीसा खान दुरानी बटल से नफीसा खान बखेर।

बिल्कुल जनाब दाद एफ एम 88.4 रेडियो मन पठग्राम दे माते वेले शियार जे निजाम सही दा उता सुमुक त मैसेज उम कोले शे कालम कोले शे जमुन द टेलीफोन नंबर दे 09973310400 देने अलावा 03097111899 ता सुमुक द मैसेज उम कोले शे लाडवा शे राइट मैसेज ता अलतब आर ए बी उ लिखे खुल नु मखल दे जेनु मखिस्तशान मैसेज बटेप के उमुक त वे सेंड कई पिंजा यात्री अथिया ता السلام علیکم صفات کاسمیٹکس ہیلو ہیلو

वेलकम मामू, आज वाला आज वंदा है नाम, आई एम अलीशवा वाले वजनी है सर। आओ बखनवाज मलंग वाई हयाद पूज सर लराला जिने के पूज पटवी स्तरगी प्रीदी ना दासी दिया रा तेना शमेगी उजे चलम फलू से पूरी सलाम आई एम छपरग्रामी अजवजानी सलाम आई एम छपरग्राम अजवजानी सेंगे आई एम छपरग्राम निजाम भाई लव यू आई एम छपरग्राम लव यू टू डेरा वनदा रोड जाना जखो गाने नावरम खोस्तासु प्ले कवाई नो जमाई अक्सा जानी तमी सलाम देर मन ना तूने बेकरार करके छोड़ दिया, मैंने भी इंतजार करके छोड़ दिया। प्यार तू कई बार हो सकता था, तूने क्यों एक बार करके छोड़ दिया। चाहता दी डाले भी तलहा है माँ तलहा तेने समेगी मुझे चरम सलामकुम मामू सिंह उम्मीद लरम ची खिली जी नखे तुम मीना वालू तमाल तरफ न सलामुना वालेकुम सलामुना भाई जमा आल सिस्टर त सलाम औ सिस्टर तवाय जस्तासु न्यू सिस्टर यम जमा सलाम कबूल खे आई एम पिशो मामू फागुड़े तबजू सनम दिखरा द सनम दि रूर वाद दे जमा दे खाल लुर वाद दे दास खे नूर वाद दे जिना को तवायम राजे सनम दिखरा शाबे हौशे सलाम वालेकुम मानो प्रोग्राम देर खेस्ते दे टूलू जिना को तलामुना वायम और नी द बटग्राम न गुलुनु सलाम डेरा मन नस्तासो वफार मानी जेमल खान सिंगे ए मामू दा साज बन खा आज वो स्तर स्वप घड़ा घड़ा प्रेरणा चला रजा खान लाला नन खुशहाल अशी मामू मक्खवा लहसुन हसी माती सम ग्रांड साज दिल गोले दे जानवर तो ठीक है सासुडेरा मनन मिनवाल उतास तो वजह प्रोडक्ट मिलाएगी बलराम विजय सरा न्यू सरहद मेडिकल स्टोर मेन बाजार बटग्राम ईमान करियाना एंड जनरल स्टोर के बतास तो मिलाएगी दुराई के न्यू बटग्राम फार्मेसी बिल मुकाबिल हतमी नबूत चौक नेज इस्लामी बैंक मेन बाजार बटग्राम इनाम सरा सेफ मेडिकल स्टोर मेन बाजार दुराई चौक दुबई मार्ट कॉस्मेटिक्स एंड जनरल स्टोर बिल मुकाबिल अटक पम बटग्राम अबुजर सरा रियाज मेडिकल स्टोर नेज डीएचक्यू अस्पताल शेरखान सरा मल्होत्रा फार्मेसी नेज पीएसओ पम मेन बाजार बटग्राम।